हे भाई वो प्रभु रूप दरिया तो अंतकरण विच लहरां मार रहा है, तू उस विच इशनान करना सी, सो सदा उसकी बंदगी कर, ज्ञान रूपी ऐनक ला के वेख, वो हर थां मौजूद है। अल्लाह पाकन पाक है, शक करो जे दूसर होए, कबीर कर्म करीम का वो करै जाने सोए। इस गल विच कोई शक नहीं कि परमात्मा सब तो पवित्र हस्ती है। मैं इस गल विच तां शक करां जे उस वर्गा कोई होर भी होवे तां। हे कबीर, ओ मनुख ही ये गल समझ सकता है जिसनू वाहिगुरु समझण योग कर देवे। ये बख्शिश उस परमात्मा दे अपने हाथ विच है, इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज़, ना फिर परेशानी माहे।

मैनू जानी ना तिला बोकर बन के हूं जदेऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पक्षियां दी झल नहीं।

असां कदे जोश विच आके अपना होश नहीं खोया, असी अग अंदर बाल दे कदे आक्रोश नहीं खोया। हुण होना जो तू वेखी मैं ता घमसान दा।

सस्ते मुल देवे की। बुलिया खीरे सस्ते मुल देवे की, लाल तकड़ी विच तुल दे वेखी, फुल पे

कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना।

एक मंजर बिना बोले जो तू कहता उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे।

मैं कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने।

चार दिना दा मेला सजना बहुती देर नी रहना जो बेचेगा कमले बंदिया। जो बीजेगा कमले बंदिया ओए ओए वड़ना पैना उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी उत्थे अमलां

ना तेरा ना मेरा लोड़े, ना फैशन अंदर कजिया जावे, तन इकट्ठा करन दिखा तेरे, सच झूठ तू मूल न जाने, तन इकट्ठा करन दिखा तेरे, सच झूठ तू मूल न जाने, ठगी फरेबी करन दे वल वी, कौसा दूर ने रब्बी पाने।

0: स्वागत है हरदीप दीप जी। जी आया
1: दोस्तों, अज दे दुआबे दे कवि दरबार च मैं अपने सत्कारयोग हरबंस सिंह जी का बहुत ही धन्यवादी हाँ, जिन्होंने अज दे कवि दरबार लई सद्दा दिता। सलो पेश कर रहा गज़ल जी दे बोल ने कदे नफरत दा बीज बीजन दे लई नहीं हुंदियां सरकारां नी। सो दोस्तो, लाइना पेश ने, नशियां ने साडे जवान गालते हुण आलूआं वांगों किसान उबालते। नशियां ने साडे जवान गालते हुण नशियां दे वांगों किसान उबालते। खेती दे औजार वेखी किते हथियार ना बन जान, ना दातियां कईयां कलमा बनन तलवारां नी। कदे नफरत दा बीज बीजन दे लई नहीं हुंदियां सरकारां नी। कदे नफरत दा बीज बीजन दे लई नहीं हुंदियां सरकारां नी। अगलियां लाइनां पेश करदा दोस्तों। जदों जुलम दी अत है हुंदी तां लोड़ पैंदी तलवारां दी। जदों जुलम दी अत है हुंदी तां लोड़ पैंदी तलवारां दी। किसानां नूं अतवादी दसदी भरी पई हंकारां दी। हक मंगे ते डांगां नाल कुटदी, हक मंगे ते डांगां नाल कुटदी। नाले मारे पानी दियां बुछारां नी। कदे नफरत दा बीज बीजन दे लई नहीं हुंदियां सरकारां नी। कदे नफरत दे बीज बीजन दे लई नहीं हुंदियां सरकारां नी। अगलियां लाइनां ने जी, अन्न दाते नाल वैर चंद्रिए कदों तीक पगावेंगी। अन्न दाते नाल वैर चंद्रिए कदों तीक पगावेंगी। जवानी साड़ी यकी पई है किवें मुल्क बचावेंगी। सड़कां ते धरने रेल दियां लाइनां ते बैठे दस होर किवें करन पुकारां नी। कदे नफरत दा बीज बीजन दे लई नहीं हुंदियां सरकारां नी। कदे नफरत दे बीज बीजन दे लई नहीं हुंदियां सरकारां नी। आखरी लाइनां ने जी, तेरी दुगनी कमाई दी सानूं पोरा लोड़ नहीं। तेरी दुगनी कमाई दी सानूं पोरा लोड़ नहीं। जे अक पंजाब नूं चबना पै गया तैनूं टप्पन दे ना मोड़ नहीं। तेरी दुगनी कमाई दी सानूं पोरा लोड़ नहीं। जे अक पंजाब नूं चबना पै गया तैनूं टप्पन दे ना मोड़ नहीं। हाले भी जाग पैनी मुल्क दिए वैर ने, हाले भी जाग पैनी मुल्क दिए वैर ने। दीपाख दा है मार मार टारा नी। कदे नफरत दा बीज बीजन दे लई नहीं हुंदियां सरकारां नी। कदे नफरत दा बीज बीजन दे लई नहीं हुंदियां सरकारां नी। बहुत बहुत धन्नवाद ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਦੀਪ ਗੀਤਕਾਰ ਨਾਭਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
0: ਕਾਮੇ ਫਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਮੱਲ ਜੀ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਮੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਜੇ ਦਾ ਹਰ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਲਦਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਤੇ

यारो खोरे लंबिया तरीका, शाह जी कदे भी नहीं आना, शाह जी कदे भी नहीं आना, सानू दे दिया उड़ीका, शाह जी कदे भी नहीं आना, सानू दे दिया उड़ीका, सानू इथे ना तू देखे कदे अंबरां च देखी, हेरां वाले ने हंडाया।

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात ले

हाय वे मेरी हाड़ा वे मेरी जान सुख दी, चन चंद्रा जदों भी चढ़ आवे। हाय वे मेरी जान सुख दी, तकदियां रहंदियां ने रावां नित तेरियां, है रावां नित तेरियां। रो रो के पीछे गईयां अखां दोवें मेरियां, वे अखां दोवें मेरियां। तकदियां रहंदियां ने रावां नित तेरियां, है रावां नित तेरियां। रो रो के पीछे गईयां अखां दोवें मेरियां, वे अखां दोवें मेरियां। गल सुन दिल धारा तेनू कहना नी दुबारा, गल सुन दिल तारा तेनू कहना नी दुबारा। हुण होर

सुन तेरी हर जीत अच हार की परीत, सुन तेरी हर जीत अच हार की परीत, चोरा मेरे हड्डा नु नित खावे हाए वे।

मैं तेरा पर्दा नी पानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। आ इक दूजे च समाइए नी आपां दोवें हाणो हाणी।

मैं किन्ना तेनू चाया, तेरे विचों रब पाया, कासे जोगा नहीं ए रिहा, मैं बड़ा मन समझाया।